0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 वेक्सि 2.7 मेगाहर्ज
1: रेडियो भेरी एफएम रेडियो भेरी एफएम
0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 वेक्सि 2.7 मेगाहर्ज
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
3: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम टेक अहिले ठीक 10 बजेको छ.
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 11 बजेको छ.
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: को खपे तमा सनपाट को डोरी
1: बास को खपे तमा सनपाट को डोरी
0: जल्दी जल्दी कर बंदो नगर रही
1: आज भजो।